हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैक हेले इख्तिरामात में कबूल के से गुलगुला उरिदुन को उम्मीद ले रची तस बिल्कुल ठीक ठाक हुए जी। जग जोड़ बो है, बराबर हुए, खुशहाल बो है, सुखाल बो है जी। ओके जी, अवरदुन को टेस्टिंग से कम ने हम को से चुंगे प्रोडक्शन के जमगा कार लग रवान दी जी। कम जमगा वेबसाइट अवरदुन के देवन बख्शन मजरे से रजी ता सोच कम जमगा दा टेस्टिंग से कम ने शरीयत आ ता सोरे जी नो प्रोडक्शन रूम बांधे नो उम्मीद लगा से द जमगा टेस्टिंग ने शरीयत बख्शन नो देर जर बच कम ने कम ग पल से ता बिया वेबसाइट बहाल को से।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 DHR, Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है खूबसूरती की, और ये आवाज है सेहत की। जी जनाब, एक नए प्रोग्राम के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ जनाब, दोपहर के 4 बज चुके हैं, और जनाब 4 बजते ही आपको आपके अपने शहर के रेडियो के ऊपर आपको ये आवाज सुनने को मिलती है एक प्रोग्राम की सूरत में कि जनाब, जिस प्रोग्राम का नाम है केसन टी टाइम शो। जी जनाब, टी बोलते हैं चाय को, और टाइम बोलते हैं वक्त को। तो जनाब, चाय के वक्त में हम आपके लिए जनाब सुरों से भरपूर, मीठी आवाज से भरपूर, प्यारे प्यारे पैगाम से भरपूर और इन्फॉर्मेशन से भरपूर केसन टी टाइम लेके हाजिर होते हैं। तो जनाब, उम्मीद है कि आप भी इस वक्त अपने अपने शहरों के अंदर अगर आप टॉक में मौजूद हैं तो मेरी आवाज सुन रहे होंगे जनाब, रेडियो अमन 88.4 के ऊपर। डेरा में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91 के ऊपर, और अगर पहाड़पुर में मौजूद हैं तो रेडियो पैगाम 97.4 की लव फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो जनाब, इन स्टेशन पर मौजूद तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, यानी इन शहरों के अंदर सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाची, मामा एंड मामी, दादा एंड दादी, नाना एंड नानी, ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों की जनाब खलील ताबे शमान के सलाम, ढेर सारी सलामती की दुआएं, ढेर सारे नेक तमन्नाएं, वेल विशेस जनाब आप सभी के नाम। जितना पूरे एक घंटे के साथ होता है आप लोगों के साथ, यानी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान एक घंटा तीनों रेडियो स्टेशन, तीनों बड़े शहरों से आपके लिए हम ऑन एयर करते हैं बराह रास्त, और इस बराह रास्त घंटे में आपको ढेर कुछ सुनने को मिलता है, और ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि जनाब वो आपकी नीड होता है, आपकी जरूरत होता है, और ऐसी चीजें आप अपने माइंड में लेकर ढूंढ रहे होते हैं कि जनाब मेरी स्किन का ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ के साथ ये प्रॉब्लम है, तो जनाब मेरी परेशानी का, मेरी फिकर का हल कहीं से मिल जाए। तो जनाब केसन के इस घंटे में, केसन के इस घंटे के अंदर जनाब आपको आपके तमाम तर फिक्रों का हल, तमाम तर फिक्रों और परेशानियां जो हैं उनके हल आपको मिलते हैं, क्योंकि जनाब केसन वो कंपनी है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि दर्जनों प्रोडक्ट आपके लिए बना रही है, जिनका ताल्लुक आपके जुल्फ और रुखसार के साथ है।

जनाब केसन के इस प्रोग्राम में कि जिसके नाम है केसन टी टाइम, आपको ढेर सारा वेलकम करते हैं जनाब, और पूरा एक घंटा आप हमारे साथ रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। सामिन कराम, आपने अक्सर देखा होगा कि जनाब एक आम का पेड़ है, ठीक है जनाब, और उसके ऊपर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। एक आम जो है पक जाता है और पक के गिर जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि वो जो आम गिरा है आम से, वो खाने के काबिल हो गया है, यानी कि वो अपनी उसने जो उसकी मुद्दत थी, जो म्याद थी, वो उसने पूरी कर ली है और अब वो खाने के काबिल हो गया है। लेकिन ये जो फिनोमिना है, ये जो एक मिसाल है जो आपको नजर आती है आम की सूरत में, यानी कि एक आम जो है उसी दरख्त के ऊपर एक आम जो है पका हुआ है और एक आम जो है वो कच्चा हुआ है। एक कच्चा है और एक अभी पका नहीं है, यानी कि एक पक चुका है और दूसरा पकने के इंतजार में है। यहाँ कुदरत हमें याद दिलाती है, ये कुदरत के ये नजारे, ये फिनोमिने हमें बताते हैं कि कामयाबी का मतलब, किसी एक की कामयाबी का मतलब हरगिज आपकी हमेशा नाकामी नहीं होती है। ठीक है जनाब, बाजू का हम ये कहते हैं कि यार फलां बंदा तो कामयाब हो गया और मैं रह गया। कुदरत आपको दिखाती है कि नहीं, अगर एक कामयाब हो गया यानी कि एक फल पक गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीछे बच जाने वाले आम जो है खराब हैं, या पीछे बच जाने वाले आम जो है नाकाम हो गए हैं। बस उन्हें अपने वक्त का इंतजार करना पड़ता है कि किस वक्त के ऊपर हो सकते हैं वो जो आम पक गया है वो इनसे पैदाइश में 8-10 दिन पहले हो, ठीक है जनाब, उसके ऊपर धूप की रोशनी का असर ज्यादा हो। लेकिन इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि पीछे वाले आम जो है नाकाम हो गए हैं और जो पक गया वही कामयाब हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जनाब अपने इंसान को भी दूसरे की कामयाबी देखकर कभी जलसी नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे कामयाब किया है, अल्लाह ताला मुझे भी एक दिन कामयाब करे।

अब केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद हैं, जो हम आपको हर रोज बताते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे हम पुरानी रवायतों से लेते हैं, कदीम तहजीब का हिस्सा और कल्चर का हिस्सा। जैसे कि हम आपको ज़ाफ़रानी फार्मूला देते हैं। ज़ाफ़रानी फार्मूला हमारा जो है वो आपको साबुन की सूरत में भी मिलता है, ज़ाफ़रानी फार्मूला हमारा सोप की सूरत में भी आपको मिलता है। तो जनाब ज़ाफ़रान, संदल और हल्दी तीन इतने ज़बरदस्त किस्म के अज़ा हैं कि जब इन तीनों को मिलाकर हम इस्तेमाल करते हैं साबुन की सूरत में या क्रीम की सूरत में, तो यकीन जानिए कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा महफूज हो जाती है। और आप क्योंकि जनाब पुराने वक्तों के अंदर हर कोई खूबसूरती उस वक्त से चाहता है जब से इंसान पैदा हुआ है और मरते दम तक इंसान बनाओ सिंगार के ऊपर जो है बहुत कुछ सर्व करता है और उसके लिए मेहनत भी करता है, उसके ऊपर वक्त भी लगाता है और जो भी चीज़ें मुयस्सर होती हैं उनको ख़रीदने की कोशिश करता है और अपने आप को प्यारा लगना चाहता है कि यार मैं हर वक्त प्यारा लगूं चाहे उम्र जो भी हो जाए। तो जनाब पुराने वक्तों में जब आज के दौर की तरह सीरम नहीं थे, आज के दौर की तरह क्रीमें नहीं थी, आज के दौर की तरह फेस वॉश नहीं थे, आज के दौर की तरह साबुन नहीं थे, तो उस वक्त भी लोग प्यारा लगना चाहते थे और ये उनका हक भी था और ये हर किसी का हक है प्यारा लगना।

जनाब उस वक्त के लोग भी प्यारा लगना चाहते थे, तो उस वक्त जो चीज़ें मुयस्सर थी उन चीज़ों से लोग जो है खूबसूरती को अपनी खूबसूरती को संवारते थे। तो केसन ने ना सिर्फ वो मॉडर्न फार्मूले बनाए हैं बल्कि पुराने पुराने वक्तों में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी उनको भी अपनी जो है स्किन के रूटीन में अपनी प्रोडक्ट्स का हिस्सा, प्रोडक्शन का हिस्सा बनाया है। तो जनाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गर्मी के अंदर केसन की जो बहुत ही प्यारी फार्मूलेशन है जिसे हम ज़ाफ़रानी फार्मूला कहते हैं। ज़ाफ़रानी फार्मूला मतलब ये है कि ज़ाफ़रान, हल्दी और संदर से बनी हुई हमारी हमारा सोप है और ज़ाफ़रान से बनी हुई हमारी क्रीम आप लोगों के दरमियान में मौजूद है और ये बहुत ही यूनिक फार्मूलेशन है। इसका कोई कंपेयर कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में आपको कोई भी केसन की। हमेशा एक चीज़ मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह और इस चीज़ के ऊपर हमें फ़ख्र है और हम सीना चौड़ा करते हैं इस बात के ऊपर कि हम किसी की कापी नहीं करते हैं, हम किसी भी कंपनी की कापी नहीं करते हैं। कंपनियां हमारा ट्रेंड फॉलो करती हैं, हमारी चीज़ों को फॉलो करती हैं लेकिन हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे माहरीन अपनी तर्ज का एक हम यूनिक फार्मूला बनाते हैं जो किसी और के पास नहीं होता है, जैसे कि ज़ाफ़रानी फार्मूला है। आप पूरी मार्केट घूमें, ठीक है जनाब, बाज़ार जाएँ, टांक में रहते हैं, पहाड़पुर में रहते हैं या फिर आप डेरस मिल खान में रहते हैं, आपको किसी और कंपनी का ज़ाफ़रानी फार्मूला के जिसके अंदर हल्दी, संदल और ज़ाफ़रानो नहीं मिलेगा, सिर्फ केसन का मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप नाइट क्रीम ख़रीदें तो ज़ाफ़रानी फार्मूला क्रीम जो है ऑनलाइन आपको मिलती है लेकिन ऑनलाइन हर किसी की रसाई नहीं होती है, लेकिन केसन के तवस्सुल से आपको हर गली कूचे के अंदर, हर बाज़ार के अंदर, छोटी बड़ी दुकानों के ऊपर ये ज़ाफ़रानी फार्मूला मिलता है। अभी तक आप बहुत सारी मुज़र केमिकल से बनी हुई क्रीमें, जैसे कि मैं आप लोगों को उस दिन बता रहा था कि ये जो ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो क्रीमें बनती हैं या जो दुकानदार आपको फार्मूला क्रीमें बनाकर देती हैं, ये कोई मास्टर नहीं है, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है स्किन के कि ये आपको आपके स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट बनाकर देंगे, बल्कि ये मार्केट में बिकने वाले जो स्टीरॉइड्स होते हैं, पोटेंट स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे कि क्लोबीविट है, जैसे कि डर्मोस्किन है या फिर जैसे कि बैटनोविट है, जैसे कि लाजमा क्रीम है, ठीक है जनाब, हाइड्रोकोनिन है, इन तमाम क्रीमों को यकजा करके उसके अंदर मार्केट से कुछ क्रीमें खरीद कर आपको फार्मूला बनाकर दे देते हैं। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्रीमें हैं जो आप परमानेंट कभी नहीं लगा सकते हैं, ये अलाउ नहीं होती, ठीक है जनाब। मिनिस्ट्री, FDA इन क्रीमों को अलाउ नहीं करती। मैं मेडिसिन से आया हूँ तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। FDA जो है कभी भी आप लोगों को ये क्रीमें कि जिनके अंदर स्टीरॉइड्स हों, जैसे कि क्लोबीविट है, लाजमा है, बेटनोविट है, ये हाइड्रोकोनिन है, ये क्रीमें आप कभी भी रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो क्रीमें बनी हुई मिलती हैं मेडिकल, ये भी आप डॉक्टर अगर आपको लिखेगा तो वो भी 15 दिन के लिए, इससे ज़्यादा डॉक्टर आपको नहीं लिख सकता क्योंकि ये स्किन को झुलसा देती हैं। लेकिन जब आप ब्यूटी पार्लर से कोई क्रीमें ख़रीदते हैं तो वो आपको रेगुलर यूज़ करनी पड़ती हैं। क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि उनके अंदर, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, ठीक है जनाब, उनको समझ नहीं आती है कि ये चीज़ें जो है रेगुलर देनी चाहिए। वो सिर्फ रिज़ल्ट देखती हैं, ठीक है जनाब, वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं कि भाई इन क्रीमों को मिक्स करने से इतने अच्छे रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये रिजल्ट किस वजह से आए हैं। और रेगुलर यूज करने से खवातीन जो है, हमारी बहनें जो हैं, अपने स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं, फिर उनके चेहरे के ऊपर गैर जरूरी बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है फटने भी लगती है और उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, पतली हो जाती है, यहाँ तक कि वेंस भी जो रगें होती हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो केसन नेचुरल पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से आपको जो क्रीमें देता है उनके अंदर किसी किस्म की क्लोबीविट नहीं होती, किसी किस्म के मुज़र केमिकल नहीं होते। वाहिद क्रीम है केसन की, केसन के जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मुज़र केमिकल से पाक क्रीम, ये बड़ा बड़ा जुमला हमने लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसी बात के ऊपर मेहनत की थी, इसी बात के ऊपर फोकस किया था कि केसन जो आपको नाइट क्रीम देगी, जो ब्यूटी क्रीम देगी, वो हर किस्म के स्टीरॉइड से पाक होगी। दैट्स व्हाई हमने बहुत बड़ा हेडलाइन में लिखा हुआ है मुज़र केमिकल से पाक, ठीक है जनाब। इसका मतलब ये है कि हम दावा कर रहे हैं कि हमारी जो लोग क्रीम इस्तेमाल करेंगे वो नेचुरल वाइटनिंग एजेंट से बनी हुई होगी, यानी कि अल्फा आर्बुटिन से बनी हुई, यानी कि कोजिक एसिड से बनी हुई, यानी कि नियासिनमाइड विटामिन B3 से बनी हुई, यानी कि विटामिन B5 से बनी हुई, यानी कि विटामिन C से बनी हुई, यानी कि इन चीज़ों से जो कि सेफ हैं, जिनको FDA रिकमेंड करती है, जिसको हेल्थ के तमाम तर, जिसको स्किन के तमाम तर प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं कि स्किन को
पैदा करने के लिए, वाइट क्रीम करने के लिए इन चीज़ों को आप क्रीमों के अंदर ऐड करें तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि लोग प्यारे होंगे, खूबसूरत होंगे, चिट्टे होंगे।

जी जना प्यारा लगना सबका आके टी टाइम है, लेकिन गर्मी की शिद्दत कुछ इस तरीके से है कि मेरी भी आपको कुछ लगा होगा मैंने कोई ठंडी चीज पी है। चाय का भी अपना वक्त होता है जना, महीना डेढ़ इंतजार कर लें फिर चाय टी टाइम में चाय पियेंगे, लेकिन अभी तो आजकल टी टाइम में गर्मी की शिद्दत चूंकि ज्यादा है तो कुछ ठंडे मशरूबात ही हम लोग पी रहे हैं और आप भी डेफिनेटली पी रहे होंगे। सो जनाब जब हम क्रीम्स की बात करते हैं और टॉपिक आज का मैं आपको बता दूं ताकि उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा सोचें भी सही ना। हाँ जनाब, टॉपिक हमारा ये है कि एक पुराना दौर था और एक नया दौर है, ठीक है जनाब, दो दौर और नए दौर की हमने पुराने दौर की यानी कि पुराने वक्तों में जो चीजें इस्तेमाल होती थी हमने आपको क्रीम दी है जिसका नाम है केसन नाइट क्रीम यानी केसन जाफरानी क्रीम। तो जो जनाब नया दौर है उसकी क्या चीज है, नया दौर की कौन सी चीज है, नया दौर का जो फार्मूला है जनाब वो ग्लूटाथियोन फार्मूला है। ग्लूटा

जनाब तीन चीजें हमने आपको नए फॉर्मूले के अंदर दी हैं, ठीक है जनाब। इसके अंदर फेस वॉश भी है, यानी कि दो व्हाइटनिंग के फॉर्मूले हैं, ठीक है जनाब, इस दुनिया के। एक पुराने वक्तों का है कि पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, वो भी हमने आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है जाफरानी फार्मूला की सूरत में, यानी केसन की जाफरानी क्रीम भी है, जाफरानी सोप भी हमने आपको प्रोवाइड किया। जाफरानी का फेस वॉश नहीं है, लोग बहुत सारे मांग रहे हैं, लेकिन फेस वॉश हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस वजह से हम, हालांकि अभी हमें लोग कह रहे हैं कि एक दो और फेस वॉश भी लॉन्च करें, ऑलरेडी हमारे चार किस्म के फेस वॉश चल रहे हैं, ठीक है जनाब। तो जफरानी के फेस वॉश नहीं है, साबुन है, लेकिन जो जदीद दौर का फार्मूला है जिसे बहुत कामयाब माना जा रहा है, और ये है भी बहुत ही कामयाब, ये ग्लूटाथियोन के ऊपर मुश्तमिल एक फार्मूला है, और इसका कंपनी, जितने भी कंपनियां बना रही हैं ये फार्मूला, इसका नाम रखते हैं ग्लूटावाइट। हर कंपनी ने इस फार्मूले का नाम ग्लूटावाइट रखा हुआ है, ठीक है जनाब। आप मार्केट में जाएंगे और अगर आप केसन के ऊपर सोल्ड हैं और आप ये समझते हैं कि भी केसन की हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, तो केसन की ग्लूटावाइट फार्मूला भी बहुत अच्छा होगा। तो आप जब मार्केट जाएंगे तो मार्केट में दुकानदार से बोलेंगे जनाब केसन की ग्लूटावाइट, ठीक है जनाब। इस वक्त 8-10 कंपनियों ने ये फार्मूला बनाया है। ये कितना अहम फार्मूला है, ये कितना लग्जोरियस और कितना इफेक्टिव फार्मूला है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये फार्मूला लॉन्च कर दिया है। इवन कि मैं आपको बताऊं कि जो क्रीम, जो ब्यूटी क्रीम होती है ना, ये सबसे पहले किसने बनाई थी, गोल्डन पर्ल वालों ने बनाई थी, ठीक है जनाब। लेकिन अभी आप देखें कि ये इतना कामयाब हो गया है कि लोग अब वो पुरानी क्रीमें नहीं खरीद रहे, ठीक है जनाब, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो उस कंपनी ने भी, यानी कि गोल्डन पर्ल ने भी अपनी क्रीम बना दी है और उसके अंदर डाल दिया भी ग्लूटाथियोन। अब वो कहते हैं कि भाई लोग तो अब पुरानी चीजें खरीदते नहीं है इतनी, तो नया फार्मूला खरीदते हैं, तो उन्होंने भी ग्लूटाथियोन ऐड कर दिया अपनी क्रीम के अंदर। सेल जब डिस्टर्ब होती है तो पता चल जाता है ना कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई लोग अब क्या चीज लगा रहे हैं। बेसिकली जो ग्लूटाथियोन फार्मूले का फायदा है वो ये है, आपकी जो स्किन है ना सामिनी किराम, आपने अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्रीम एक वक्त में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही होती है, लेकिन कुछ वक्त जैसे गुजरता है तो वो क्रीम आपको वैसा रिजल्ट नहीं देती है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि कंपनी ने दो नंबरी शुरू कर दी है। कोई कंपनी बेवकूफ होगी जो लाखों रुपए का बिजनेस खराब कर दे, अपनी क्रीम दो नंबर क्रीम आपको बनाकर दे दे, तो वो तो उसका एक बैच होगा, उसके बाद लोग खरीद लेंगे। असल वजह ये नहीं होती है कि कंपनी ने दो नंबरी शुरू कर दी है, असल वजह ये होती है कि आपकी स्किन रेजिस्ट कर जाती है उस क्रीम को, ठीक है जनाब, यानी कि मुजाहमत कर देती है। वो जो फार्मूला आप एक अरसे से लगा रहे थे, बिल आखिर वो फार्मूला रेजिस्ट हो गया, ठीक है जनाब, वो फार्मूला, वो क्रीम आपके स्किन के साथ रेजिस्ट हो गई, यानी कि मुजाहमत देने लग गई है कि अब वो उसके ऊपर असर नहीं करती। अब उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि आपको स्विच करना पड़ता है एक और फार्मूले की तरफ। मैं आपको सिंपल अल्फाज में अगर समझाऊं तो ये होगा कि जनाब आप एक, मैं आपको बताऊं कि जब पहले, आज से 10 साल पहले जब मलेरिया होता था तो बैसोक्वीन की एक टैबलेट होती थी, 2-3 टैबलेट ली जाती थी, मलेरिया क्योर हो जाता था, मलेरिया ठीक हो जाता था। फिर कुछ अर्सा हुआ कि लोग, मलेरिया ठीक नहीं होता था, रिसर्चर्स ने बताया कि भाई ये गोली रेजिस्ट कर गई, आप इसे 4-10 गोलियां भी खिला देना तो उसका मलेरिया ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ, उसके साथ एक और फार्मूला आ गया मलेरिया के लिए, आर्टिमीटर का, ठीक है जनाब, आर्टिमीटर को ऐड कर दिया गया। जब आर्टिमीटर दिया गया तो बिल्कुल लोग ठीक होना शुरू हो गए, यानी कि 5-6 साल ये फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से चला, मेडिसिन के लोग जानते हैं। लेकिन 5-6 साल जैसे गुजरे ना, फिर ऐसा हुआ कि लोगों का मलेरिया खत्म नहीं हो रहा था, तो फिर एक दफा फिर से रिसर्च की गई और एक और फार्मूला बनाया गया, यानी आर्टिमीटर के साथ लोमिफेंट्रीन को भी ऐड किया गया। अब लोमिफेंट्रीन 2011 में लॉन्च हुई और आज 2027-26 है, यानी कि 16 साल हो गए, अभी तक वही फार्मूला सबके ऊपर काम कर रहा है। ये मैं मलेरिया की बीमारी की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है जनाब। रेजिस्टेंस की बात करूँ कि किस तरीके से आपकी बॉडी किसी भी चीज को मुजाहमत करती है, किस तरीके से रेजिस्ट करती है। तो बैसोक्वीन से जो लोग पहले ठीक हो रहे थे वो रेजिस्ट कर गई, वो गोली काम करना छोड़ गई। फिर आर्टिमीटर आ गया, आर्टिमीटर ने भी काम करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद लोमिफेंट्रीन को ऐड किया गया कि आप इन दोनों चीजों को मिलाकर लोगों को दें, इनका मलेरिया ठीक होगा। तो आज 2011 में ये लॉन्च हुए थे और आज 2026 है, लेकिन अभी तक
लोग उसी दवाई से ठीक हो रहे हैं, यानी कि अब वो परफेक्ट फार्मूला आ गया। अब ये जो ग्लूटाथियोन का फार्मूला लॉन्च किया गया ना, ये उन्हीं लोगों के लिए लॉन्च किया गया जिनको पुरानी क्रीमें अब रिजल्ट नहीं देती हैं, यानी कि जिनकी स्किन रेजिस्ट कर गई है पुराने फार्मूलेशन के थ्रू। वो कभी ये मत सोचे कि क्रीम ने दो नंबरी आ गई है, कंपनी दो नंबरी कर रही है, बल्कि उन्हें जरूरत है कि वो अपनी फार्मूलेशन को चेंज करें, वो ग्लूटाथियोन फार्मूले की तरफ है। तो इस वक्त मार्केट में ग्लूटाथियोन की क्रीम भी मौजूद है, नाइट क्रीम भी है, डे एंड नाइट क्रीम भी है, ग्लूटाथियोन का फेस वॉश भी है, ग्लूटाथियोन का साबुन भी है। अब केसन के पास इन चारों आइटम में से क्या मौजूद है? नंबर वन, हमारे पास ग्लूटावाइट का फेस वॉश मौजूद है जिसकी कीमत है 450 रुपए। दूसरे नंबर पर हमारे पास ग्लूटावाइट का केसन का सोप मौजूद है, साबुन मौजूद है जिसकी कीमत है 250 रुपए। तीसरे नंबर पर हमारे पास केसन का ग्लूटावाइट डे एंड नाइट क्रीम। अब ये डे एंड नाइट है, आपकी मर्जी है, इसको आप रात को लगाएं या आप दिन को लगाएं, या रात को भी लगाएं और दिन को भी लगाएं, डुअल आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। तो केसन इस वक्त मार्केट की अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहली कंपनी है। डेरा टांग पहाड़पुर में आप बाजारों में जाएं, किसी से पता करें कि एक कंपनी की क्या तीनों चीजें मौजूद हैं, कि जिसकी क्रीम भी हो, जिसका साबुन भी हो, जिसका फेस वॉश भी हो, तो आपको एब्सोल्युटली नॉट में जवाब मिलेगा। क्योंकि किसी कंपनी ने सिर्फ साबुन बनाया है ग्लूटाथियोन का, किसी ने सिर्फ फेस वॉश बनाया है, किसी ने फेस वॉश और क्रीम बनाई है, किसी ने सिर्फ क्रीम बनाई है। तो केसन के पास अल्हम्दुलिल्लाह एबिलिटी और हमारा वास्ट प्रोडक्शन के एरिया और प्रोडक्शन सिस्टम के, जिसमें हम आप लोगों को तीनों वेरिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी जेब के मुताबिक कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आजकल के दौर में जिसने ग्लूटाथियोन फार्मूला नहीं लगाया ना, तो फिर उसने क्या लगाया यार, हैं जी।

0: ग्लूटा व्हाइट केसन कंप्लीट रेंज, नए दौर का नया व्हाइटनिंग फार्मूला।
1: जी जनाब, नए दौर का नया व्हाइटनिंग फार्मूला है और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा जनाब। क्रीम इसकी भी मौजूद है और हमारी 30 ग्राम की ये क्रीम है और आप दिन के वक्त थोड़ी सी मिकदार लगाएं, ठीक है जनाब। अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है जनाब, तो आप जब डे एंड नाइट लगाएंगे तो रात को भी ये क्रीम आपकी स्किन के ऊपर काम करेगी और दिन के वक्त भी आपकी स्किन के ऊपर काम करेगी, ठीक है जनाब। और अगर दिन को नहीं लगाना चाहते कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं आपके, आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में क्या कहते हैं, हाँ जनाब, अच्छा जी, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, और आप सब्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और सवाल जो है हमारा वो ये है, आपने ये बताना है नया दौर और पुराना दौर के हवाले से हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ, नए दौर का आपको क्या अच्छा लगता है और पुराने दौर की अच्छी बात, यानी कि एक पुराने दौर की अच्छी बात आपने बतानी है और एक नए दौर की अच्छी बात जो है आपने बतानी है। तो नए दौर का नया फार्मूला केसन ग्लूटा वाइट फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस वक्त ग्लूटाथियोन, आखिरी बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद मेरी जो कोल्ड ड्रिंक

0: आप अपनी एक्स्ट्रा केयर करेंगे। और केयर करने से पहले जनाब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम मौका इस वक्त जरूर देंगे क्योंकि काफी देर से वो हमें कॉल कर रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन इन सारे नाल नान से सो अपना? हेलो हेलो हेलो
1: हेलो जी
0: जी जी जी सही हेलो क्या दे पे तुरी आवाज गाल दी समझ नहीं आती पैसा को
1: गाल तो पठा दे कौन अलग आती है
0: जी। हेलो जी जनाब जी जनाब अच्छा जी आवाज की आपकी समझ नहीं आ रही तो आप जगह चेंज कीजिएगा अपनी और फिर हमें कॉल कीजिएगा जनाब। और बात कर रहे हैं केसन ग्लूटा वाइट के हवाले से बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ। केसन ग्लूटा वाइट कंप्लीट रेंज और मैं आपसे कह रहा था कि जिन लोगों को जल्दी हो रिजल्ट की कि भाई रिजल्ट जल्दी मिलनी चाहिए वो डे एंड नाइट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। SPF भी मौजूद है। दिन के वक्त लगाने से आपको क्या होगा कि जनाब सन ब्लॉक सनस्क्रीन की बेनिफिट्स भी देती है केसन ग्लूटावाइट क्रीम। और एक और कॉलर जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, हाल सुना
0: जनाब? क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? नाम बताएंगे जनाब अपना? नांद से सो अपना सही ना? बिल्कुल सवाल सारे को लोग करेंदे अक्सर लोग सब कोई गाल करेंदे कि कोई फार्मूला बनाओ जेरे वाला को काला करे। असल च ये जेरे वाला को काला करने वाले जितने भी फार्मूले होंगे ना इन्हें दे विच बहुत ही खतरनाक किस्म के केमिकल होते हैं। ठीक है सही? तो सारी जेरी कंपनी है ना वो सेफ शैया बनेंदी है यानी लोगों को नुकसान न पहुंचे। ठीक है सही? ऐसा भरपूर कोशिश है कि कोई ऐसा कुदरती फार्मूला बनाऊं। ठीक तो मेहंदी होंगी है कुदरती तरीका है कि मेहंदी इस्तेमाल की करो वो ही कुदरती तरीका है तुम्हारे वाला को रंग करने वास्ते ना। ठीक है सही? सारी कंपनी चूंकि सारे खालिस से कुदरती शिया बने दिए तो वो फार्मूला सारी कुदरती शिया च नहीं आंदा बिल्कुल भी।
1: अच्छा
0: तो असा ही वजह को उन्दे वास्ते माजरत चाहने हैं कि बहुत सारे कंपनियां दे मौजूद हैं तुसा इस्तेमाल करो तो जेले कोई सा कोई पॉसिबिलिटी नजर आई कि भाई नेचुरल तरीके से असा कोई ऐसी शिया बढ़ा सकते हैं तो असा तो जरूर बढ़ा के देसू। तो हूं मैं कोई दसो कि पुराने वक्त की केरी गाल चंगी है नवे वक्त की केरी गाल चंगी है?
1: यार पुराने वास्ते भी गाल मसले इन जो सारे तेरी तली ने को ना सब देने क्यों करना था आलो सफा ऐसा कह रहे कहने ये सोच ना उसके ना खोसा उसे तेरे गाल ये मजे लेने ते ऐसा के चले पर मूले तो ही नहीं तेरे सोचा अपने मसा।
0: अच्छा तो आपको नहीं याद आने पे कि पुराने दौर दी केरी गाल चंगी है ते नवे दी केरी चंगी है हैं जी?
1: यार नवे भी चंगे तो पुराने चंगे के बारह दिन सारे जिंदगी को टपाउने
0: जिंदगी को टपाउने। चलो ठीक है इसब खान बहुत मेहरबानी से इस नाल मौजूद है तो बहुत शुक्रिया जनाब नवाज जी। जनाब फार्मूले की बात कर रही है और फार्मूला हम बहुत सारे बना रहे हैं आप लोगों के लिए और खवातीन के लिए तो हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि हमने बहनों के लिए एक स्पेशल सा फार्मूला बनाया है फेस वॉश के अंदर जिसे हम कहते हैं प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश।
2: चेहरा लवली बनाए क्योंकि यह खास फार्मूला वुमेन जॉब को अपना हक दिलाए। हाँ।

0: जी जनाब, आपका हक आपके पास और एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम लाला खलील।
0: जनाब शिराज अली शाहानी सनल मौजूद इन सही, क्या हाल जनाब? ठीक ठाक हो? अलहमदुल्ला शुक्र है। तुसा सुनाओ सही, ठीक ठाक? चाह पीती बैठे वे की चाह हाल तक पीवनी है तुसा?
1: नहीं लाला, चाह पी के आए बैठे अपना बगैर दी छां तले संगती दोस्त बैठे हैं, तुम्हारे प्रोग्राम सुन रहे पाए।
0: अच्छा, बगैर दी छां तेरे बाद हवा चलती पई है कि ना? थोड़ी
1: बड़ी मजे की सवेरे का मौसम तो बड़ा बेहतरीन है, बड़ी छड़ी हवा चलती पई लाला।
0: अच्छा माशाल्लाह, दरख्त तले बह के चाह पीवना दा मजा भी आउंदे, ते नाल रेडियो चलदा पियो होवे, ते नाल केसन दा प्रोग्राम लगा पियो होवे, ते सही मजा दोबाला तहबाला होसी बल्कि।
1: ओए ओए ध्यान दे छाऊ।

0: जनाब ब्यूटी किंग कहा जाता है केसन को, क्योंकि केसन आपके पांव से लेकर जनाब सर तक की खूबसूरती का ख्याल रखती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम अलील खान जमान भतरीजा, क्या हाल है? ठीक
0: चाचा फतेह खान, क्यों हाल है चाचा? ठीक ठाक बदे वे तुसा?
1: अल्लाह की मेहरबानी है। क्या कठारा भाई खान तो साल करते हैं 291 से सुन लेता लगा जी कितने।
0: अच्छा आज 91 सही आना भी है।
1: गर्मी
0: टेम्परेचर की वजह होती है, ड्रॉप सर्दियों की चंगे थी। वैसे वैसे रेडियो सुनन दे रिवार
1: है तो घर को
0: चाचा फतेह खान
1: इस्लामाबाद आवर दे नी आली ले आंदे गर्मी होवे का तेरे नी आंदा
0: डेरे नी आंदा। मैं कोई सुना रेडियो सुनन दा मौसम असली केरा होंदा है, सर्दियां दा मौसम या गर्मियां दा?
1: पता तो है सर्दियां दा मौसम ठीक होते कोई रहो दिया ना के एफएम ठीक आवे ने सारे को पंजाब दे।
0: अच्छा पंजाब वाले आवे ने ते बहुत सारे एफएम सुन दे रहंदे वे। चलो ठीक है, हाजमा कंट्रोल सिर्फ तोरे तक राजे गफूर पहुंचाया है या मैं को आपे हमणा पोसी मोटरसाइकिल ते किक मार?
1: कोनी पुछाया राजे गफूर पुछाया कोनी, काला करने छोड़ के पता रे खैर है जा वैर है। अच्छा के आप रे वे सर?
0: अच्छा तो आपको काला करना छोड़िए, साकू तो काल करे ना रोजाना करे ने पुराने दौर की कोई चंगी गाल दसी वो असाको तुसा तो डिठा है असा तो नहीं डिठा
1: पुराने
0: दौर दीवार के मतलब वरे साल को आते हैं वरे की दीवार थी
1: गर्मी आते बहुत समय आते हैं आज वरे की दीवार थी वरे क्या थे होंगे
0: यार। अच्छा जी
1: ये दिया वात उन उधर जान के निकले तो साल को वरे सरे ने सरे की थी।
0: ठीक है तो ये इना गाल ना क्या मकसद वरे की दीवार मतलब लोगों ने कोई टाइम बहुत होता है उन दौर के बीच कम नहीं होते हैं रे
1: तो वन्नी भी हार ठीक है तो जो जाट बने आने साथ है बने आने
0: राजा कपूर को रेडियो पैगाम 97.4 ग्लोबल एफएम 91 और रेडियो अमन एक साथ
2: घना बनाए दे नया।
0: मुझे कहते हैं खलील और ये है केसन नेचुरल पाकिस्तान का केसन टी टाइम शो, यानी के वो शो जो चाय के वक्त में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। राजा गफूर हमारे साथ हैं इस दफा, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, इधर मतलब है चाचे फतेह खान नाल मेरे को मोहब्बत है दिल दिलू।
0: तो सा उन्होंने तो कुछ जिक्र किए तो आपको याद किए थे तो फौरन तो रिकॉर्ड था ये ऐसे
3: ओ ये याद है बेकार निकले के भी मोहब्बत है काल दे तू काल लगना कोई सोका काम
0: काल दे तू काल लगना जी तत्रा शहर मुकाबला कीती पेवन काला मिलावण दे तो उंद विच राजे गफूर दी काल एग्जैक्ट टाइम ते मिल वने तो बहुत बड़ी सही है। ता
3: असल सीधी गल है उनका नंबर मेरे को गई थिएटर में नंबर कर यूं का चलाई बदे।
0: अच्छा नहीं मैं को जरे कॉल की थी पहन तो जोंग वाले नंबर को कॉल की थी बदे अंत कोई
3: हां ओ ना वो नंबर 5-6 भाई इकट्ठे आने वाले मिल गए पता नहीं लगा।
0: अच्छा तो सवाद शो दे बाद राजा चाचा फतेह खान घंटी करे सो राजा गफूर दो। जितने भी फार्मूले हैं जिवें के ज़ाफ़रान संदल
3: उस टाइम होंगे ने हालात घटे बने
0: पिछे ते गाले सो को याद ही कोनी सही है से।
3: अच्छा जीवे जीवे होले ने दौर आंदा पी ते सन ब्लॉक आंदी पी ते जी करीम आंदी पी क्रैक क्रीम जी ते सिद्रा करीम ते हुमैरा करीम ते इन आदो काई नाम निकल जांदी ने ਮਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾ ਕਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੀ ਏ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
3: ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਮਾਈ ਸ਼ਹੀਨ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਸ਼ਹੀਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਹੀਨ ਕੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਨ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਨ ਪੱਖੀ ਹੈ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹੀਨ ਚਾਤੀ ਬਤਾਈ ਓਕਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਬਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਚਿਕ ਪੈਸਾ ਹੂੰ ਕਿ ਲਾਲਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਗਿਣਸਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਆਖੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚਿਕਾਵਣ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲ ਤੁਸਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਵੰਗ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸ਼ਹੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਨ ਕੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਣਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੇਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਗਿਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ
3: ਸਾਰਿਆਂ
0: ਕੋ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ

नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ अब बालों से 100% खुश्की जाए आगे बढ़ने का

ओके जी राशा का नोटेंशन जोर दे गोरे से और दोनों को था बिल्कुल पूरी ग्राम और नोटेंशन का स्मेड एक्स पाकिस्तान नोटेंशन ब्यूटी क्रीम नोटेंशन फॉर्मूले क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन मॉडर्न फॉर्मुलेशन बिल्कुल राखिसले शी से मलवले शहा जमा खेंदो जमा मेंदो जमा रुणो टोली से मलवले शहा

0: ग्रानो मिनावाल समुंग दुकान पता याद कर
1: अमान मोबाइल सेंटर टांगडा डेरा इस्माइल खान प्रोप्राइटर हबीब मसूद

0: ओके सी सुमर मैंने तुने में महबूब इधर था ऊपर सिफर 3936851488। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: शाय अजी खोरे तसना।